बेअंता तेरे अनेका तेरे अनेका पढ़े बहु सिमरित सासत जी कर क्रिया खाट कर्म करंता।

जब उद करह करा करतारा प्रजा तरत तब देह पारा जब आ करह करत हो कब हूँ तम मैं मिलित देह तार सब हूँ।

पूर्ण सोबराता अखिल दिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखी अनको शय करता श्री आस्तो जा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशित फल पावे सोई दुख न दसा बे आपद कोई अड़ेला

दोहरा राम कथा जुग जुगी अटल सब कोई भाखत नेत सुरगवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चाओ पई।

वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो।

सो हमारी रक्षा करे। बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गंध बिन सह तब गंध एव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोतिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद।

चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुरु पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर दंडावत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध न जाने आतन अंतर हम मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चलहे चुबै दुख पावहे जम काल सहे सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मर

ज्यादा होगा। जद कदी मनुख का यह प्यार प्रेम की सूरत इख्तियार करता है, जिन्हों उर्दू परशियन इश्क कह देंगे, यह छोटे की तरफ नहीं आता, बराबरी की तरफ आता है। स्नेह ते बच्चिया नाल हो सकता है, प्रेम भरा नाल हो सकता है, मित्र नाल हो सकता है, पति नाल हो सकता है, पत्नी नाल हो सकता है, दोस्त नाल हो सकता है, भैन नाल हो सकता है, भरा नाल हो सकता है। यह बराबरी की तरफ आता है, इहदे च कोई छोटा वड्डा नहीं आता है। तो यह रिश्ता देण दा भी नहीं आता, स्नेह दे ते सिर्फ देना ही देना है। यह भी मैं अर्ज़ करदा हां, बच्चे नूं ते देना ही देना है, मां ने समा भी देना है, सब कुछ देना है, दुध भी पिलाना, उसकी सेवा भी करनी है, उन्हें बस्तर भी बदलने, स्नान भी कराना है, उन्हें दुध भी पिलाना है, सब कुछ करना है। स्नेह विच देना ही देना होता है, प्रेम विच मंग खत्म हो जाती है। इस वास्ते कहते हैं मनुखता शुरू ही प्रेम तो आती है, स्नेह तो नहीं आती, नहीं आती। स्नेह विच ग्रसे हुए मनुख देखे गए ने, अपने बच्चे ने ते पिठ ते हाथ लाया ते छाती ठर गई है, पर एक ओपरा बेगाना बच्चा आया, सीने नाल भी लगता पे ते उन्हें चुके परे पे मारता। ऐसा एक दफा मैं हजूर साहब दे देख के दंग रह गया, एक बिरध माता बैठी, एक मासूम बच्चा खेड़दा खेड़दा आया, किधर उदी गोदे चाण बैठा, उन्हें चुके परे सुटिया, बच्चा रोन लग पाया। उत्थे मैं इस गल नूं सोचिया, मैं कह इसका अपना नहीं है, इहदा पुत पोतरा नहीं होवेगा, ओपरा विचारा आ गया। वाकई ओपरा सी, मां उसकी भज्जी हो आई ले गई, रोण लग पिया। अपने बच्चे विच औगुण भी होवन बड़े प्यारे लगते हैं, दूधे जे बच्चे विच गुण भी होवन नहीं प्यारे लगते। स्नेह की दृष्टि बड़ी सीमित होती है, बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित होती है। प्रेम थोड़ा महान होता है, ये पवित्रता होती है, ये कुर्बानी का जज्बा होता है। भरा भरा तो कुर्बान हो सकता है, पति पत्नी तो कुर्बान हो सकता है, पत्नी पति तो कुर्बान हो सकती, मित्र मित्र तो कुर्बान हो सकता है, निछावर हो सकता है, मंग कुछ भी नहीं, एक दूजे तो सदके हो सकते ने, कुर्बान हो सकते ने। मैं हैरान हाँ, भाई साहब भाई गुरदास जैसी शख्सियत ने अपनी बाणी विच लैला मजनू का जिक्र किया, सस्सी पुन्नू का जिक्र किया, सोनी महिवाल का जिक्र किया, हीर रांझे का जिक्र किया, और ये वार दरबार साहब विच भी गाई जाती है। सब तो पहले अज तो 30-35 साल पहले बुजुर्ग रागी भाई हरि सिंह जद गा रहे सन तो मेरे कन्ना च पहुंच, उठो ही फिर मैं सोचा इस नूं, मैं कि ये तो कोई भगत नहीं सन, संत नहीं सन, भाई गुरदास जैसे आलम फाजल ने इन्हां नूं थां दे दित्ती है, और जिस बाणी का कीर्तन करन दा सुभाग है उस बाणी नूं उसका कीर्तन हो सकता है, उसका कीर्तन किया जाता है। फिर मैं थोड़ा जिहा इसकी गहराई च गया, प्रेम ही मनुख नूं पवित्र करता है, ज्ञान नहीं पवित्र करता। बड़े बड़े ज्ञानियों के हिरदे मलिन रहणगे, होंदे ने, ज्ञान तो है कि पत्नी है पर प्रेम नहीं है, कि ज्यादती कर सकता उस नाल, ज्ञान ते है ये पति है पर प्रेम नहीं है, ये उस नाल धोखेबाजी कर सकती है, चलता है। इतनी ते समझ है मेरा भरा है पर प्रेम नहीं है, ये उस नाल भी छल कपट कर सकता है, उस नाल भी धोखा कर सकता है। समझ ते सी विभीषण नूं भी, रावण मेरा भरा है, पर सारे सीक्रेट

0: यो शब्द है जो परमात्मा तो आया, ईश्वर तो आया, जिस शब्द तो सारा संसार आया है, वो शब्द जिसनो सुनाई दे जाए संत है, भगत है, और जो सुन के प्रगट कर देवे वो अवतार है। महाराज कहने मैं चुप हो गया, मैंने जो कुछ सुनाई देता है ब्रह्मंड दे जगत दे लोको तुसी सुन लो, जैसे मैं आवे कसम की बाणी फैसला करी ज्ञान वे लालो। खदीजा ने मोहम्मद साहब ने सुन के कहा कि बोल थोड़े नहीं हो सकते, इतने तरतीब देच और इतने ज्ञानमयी और इतने रसदायक कि थोड़े बोल नहीं हो सकते। मोहम्मद साहब की अखां भरिया हुई सन, अशक बार अखां नाल कहन लगे खदीजा तू ठीक समझे, मोहम्मद ते चुप कर गया, शायद हुण नहीं बोल सकेगा, जो तू सुनया ये खुदा नूं ही सुनया, मोहम्मद ते हुण नहीं बोल सकेगा, मोहम्मद ते चुप कर गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे हो आपो बोल ना जाणदा हो कहा सब हुक्म आप, हुण ते मैं बोलना जाणदा ही नहीं, गल खत्म, हुण जो कुछ बोलदा है खसम ही बोलदा है, परमात्मा बोलदा है, ईश्वर बोलदा है। उस ईश्वर दे बोल सुनने जिसनों नसीब होवन खुश किस्मत है, जिसनों जुड़ना नसीब होवे वो तो जीवन मुक्त हो गया, वो तो जीवन मुक्त हो गया। इतनी सेवा प्रवान करनी, हुण एक शब्द सुनो आनंद साहब का पाठ ते समाप्ति। रोज 8 to 9 दास थोड़ी सेवा करेगा, गालवन थर्सडे तक, वीरवार तक, उम्मीद है आप समय से पहुंच गए, सतगुरु की हाजिरी भरोगे, बोल चुक की क्षमा तुसी बड़े एकाग्रता नाल टिकाओ नाल सरवण कीता, बार बार सारयां दा धन्नवाद, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

विचार करते कै करना नाही सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै होवै सचियार तौलै उपर केता पार। धरती होर परै होर तिस्ते पार तलै कमन जोर। जी

जो तुद भावै साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर

जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार ना जोगी जाने रुत महा ना कोई जां करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सबको आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखी है लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह।

पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, केवड़ ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार। ए बेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए। ओ जाने

जुग जुग एक वेश एका माई जुगत वे आई तीन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावे

आसन लोए लोए पंडार जो कुछ पाया सो एक कावार कर कर वेख है सिर जनहार नानक सत्य की साची कार आदेश तसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख होए लख वीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश ए तरह पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै फीस आखन जोर चुपै नहीं जोर जोर न मंग दे न जोर जोर न जीवन मर न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोय राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती था प्रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खो करम केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश केते ब्रह्मे काट कड़िया रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंतनांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै काट कड़ी है बहुत अनूप का किया गल्ला कथिया ना जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथै कड़ी है सुरां सिदा।

मरै न ठागे जाए। जिन कै राम वसै मन माहे, जिथै भगत वसे के लोए। करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार। कर कर वेखै नदर निहाल, जिथै खंड मंडल वर भंड। जे को कथै

जाप श्रीमुख वाग्पाद सहित स्वी छपे संतो प्रसाद चक्र चैनी हर वर्ण जात हर पात नय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नर सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अभारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अभाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अवेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वध्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्व नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत बंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमो देव देवे अभे की अभेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र पाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवर्मी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण गुगुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग
नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दाभुद्धाभिर्द करता अधो उर्द अर्दं अगा उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोच्पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारं अछेदी अपेदी अनाम अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंपुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तं निनाथे नमस्तं परमाथे नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अकाले नमस्तं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो सर्व तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व दिशं नमो सर्व कृत्सं नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तं परसजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धं निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मात्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख नराग जात्र तात्र दिशा विशा हुए फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थापे सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास

कालांकान अनुभूत अंग अभाव अंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण गुरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदि श्री तरम सर्वां बरनांडिय अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निरनामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभेज लोक के आदित सुक के अवधूत वर्ण के बेपूत कर्ण के राजम प्रवाह के धर्म तुजा है के आशुक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रं बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानिय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन रजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदमुदा में गरीब उल शिकस्ते गरीब उल परस्ते बुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमाम रजूअल निदाने हरीफुल अजीम रजाय यकीन अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदि रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामित तिर बरगन तिर बादे अगजे अगादे सुभंग सर्वपागे सुसर्वान रागे तिर पुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेख है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंद है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेख है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर्क नासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਭੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਨ ਮੁਦਾਮ ਹਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਨ ਮਨ ਸੁਨਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨਭਉ ਅਨਾਸ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਣ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਨ ਮੁਦਾਮ ਅਨਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਾਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨਭਉ ਅਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਤਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਾਨ ਵਾ ਏ ਕੈ ਸਦਾ ਓਂਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਛ ਜੁਗਾਤ ਅਜਨਬਾਤ ਅਨਛੰਜਗਾਤ ਅਨਰੰਜਵਾਤ ਅਨਟੁਣ ਪੰਡਾਰ ਅਨਠੰਡ ਅਪਾਰ ਆਢੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਨ ਬਰਨ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨ ਸ਼ੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨਾਲੇ ਹੈ ਹਰ ਕਾਲੇ ਹੈ ਕਲਖੰਡਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਡਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸੁਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਵਾਰਨ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨੀ ਹੈ ਸਰਬੰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਬੰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਵਪਾਸੀ ਹੈ ਸਰਵਨਾਸੀ ਹੈ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ ਬਸਵਰ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸੁਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਸ ਹੈ ਕਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ ਅਜਪਾਜਪ ਹੈ ਅਤਪਾਤਵ ਹੈ ਅਗਰਤਾਕ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਕਰਨਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਗਰਤਾਕ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਤਰਨੀ ਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਤੇਸੁਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਕਲਗਾਇਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈ ਨਿਰਮਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰੂਪਾਇਕ ਹੈ ਭਵ ਪੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਵਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਵਾਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਪਜਾਂਗ ਪੁਰਾ ਛੰਦ ਨਮੋ

अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश आकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते अजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते। तो प्रसाद सोइए श्राव समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार दन सुध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पहुन के गुण कुजात निवारे पारी प्रजान कपूर बलि बन्या सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे अंकुनांगे बाय बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसद है राज हजारे पूत पवेख पवान के पुव कौन गुने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के दाम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्जान दलेंगे।

श्रीपद श्री भगवान कृपा त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बछैया तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबै अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वम्बर साज भरेंगे ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बसे जम्फात।

0: नहात फिरो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सब तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिया।

चुन चुन सत्र हमारे मारिए, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास नवरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरिया तुझो करियो रच्छा।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सापर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचान, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतन नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी। कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पाक परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर।

अंतर आत्मा संभाले आप छड़ सदा रहे परने गुरबिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए। जे को गुर तेरे मुख होए दिल सतगुरु।

वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रीतम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाय। अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ते आई है जिस दिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ता सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी गरीब बनवाज दातार जियो सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहीं दे स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु।

0: गुरु रूप सात संगत जीओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। HMV पिछले 50 सालां तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पाठ ते शब्द रिकॉर्डां कैसटां राही आप जी की सेवा विच पेश कर रहा है। भाई साहब तलोचन सिंह रागी की आवाज़ विच 1966 तो हुण तक आप जी पाठ सुखमणी साहब नितनेम दीआं बाणियां अरदास हुकम ते कई शब्द सुन चुके हो। हुण संगतां दी मंग नूं मुख रखदिआं होइआं नितनेम दीआं सारीआं बाणियां जो पहले अलग अलग सन इको कैसेट CD विच पेश कीतीआं जा रहीआं हन। सवेर दीआं बाणियां जपजी साहब, जाप साहब, त्वै प्रसाद सोईए, चौपई ते आनंद साहब, संध्या वेले रहराज साहब, रात सौण वेले कीर्तन सवेला। छेती ही भाई साहब दी आवाज़ विच रिकॉर्ड कीते होए सारे शब्द इकट्ठे कैसेट CD विच आप जी दी नज़र करांगे। उस तो बाद आसा जी दी वार दे कीर्तन दी कैसेट भी छेती ही आ रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: परम सम्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों, आप जी ने पाट कीर्त साहिब जी दी रचना तो उच्चारण कीता होया गुरु रामदास कृपालू जी दी सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण कीता है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आद गुरु धन गुरु नानक साहिब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नूं जाणिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहिब जी दी कीती हुई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहण वाले धन गुरु अंगद साहिब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहिब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान, साड़ी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। किन्हें इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहिब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडन वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणां विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो कृपालता, फिर उच्च

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो, धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया, हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया, गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थकां सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने, इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थकां, जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावां, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खदियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है, कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਨਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਈ। ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਕੋਰ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਕੋਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਏ। ਚੰਦਰਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਮਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਕੋਰ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਇਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਕੋਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਥਿਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜੀ ਜਾਏ। ਗਰਦਨ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਚਕੋਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਕੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੇ ਉਸੇ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਨੇਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਤਾਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਿਵ ਲਾਣੀ, ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਚੱਕਵੀ
सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावें शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है, दरअसल उहदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानण विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण इक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा उहदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी उहदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी उहदी सोचण दी शक्ति नहीं, मनुख जितना वह कोई कार विखार भी नहीं कर सकता, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओह केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, निहो कवल जल जानी है खिड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जिहड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है। हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है, ओ आसमान दे उते ओ धरती दे उते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदों खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा उदों पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। उहदे विच भी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्र दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, कि पानी जेड़ा वह सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे होए बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस हिरदे विच टिक जाए सच जाणो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। ए कैसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिया बहुत सोहनी है पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले,
न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले मोर बाबी ये बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निभ है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभन वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसियां। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दिया रहाओ दिया तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटै बिन प्यार हे मेरे मना की परमात्मा नू प्रेम तो करन तो बिना

0: अष्टपदी
1: अपना सीता मन मह राख
0: मानु की तो प्रीत त्याग
1: इससे परे ना ही किश होए
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ फेरे की चरनी पाओ
0: नानक कै मन हे नराव
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जाता नेत्र फोर
0: मंत्र न जाने होर
1: अंध रूप मंगल सद जाके
0: सर्व थोक सुनिए करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: अपमत पीसर कृष्ण मैं भोगी
1: त्याई त्याई भक्ता सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत ना है
0: सगल देव हार अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जाको परमाए
0: जन्म रेफरे आवे जाए
1: पूज नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना विद किनो विस्तार
0: रब बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे किन माहे
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना भेद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: सत के बल प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी वाणी
0: सत पुरुष सब माहे समाणी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुरते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित भू जय जे कोय
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की असर सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी सिफ्ट सो करना है हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योत स्वभाव है सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्मात
0: जिन बुझ जात से आया स्वाद
1: सब कह रंग राज जन रहे
0: गुर कह वचन पदार्थ लहे
1: कोई दाते दुख काट न हार
0: जाके संगत रह संसार
1: जन का सेव सो वट भागी
0: जन कह संग एक लिव लागी
1: गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसन्न हार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत ध्यान हार
1: आप सत सत सतधारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजन हार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया
0: तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजे तिस माहे समान
1: बस माही ले बस कटाई
0: ताको भिन्न न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभु पालन हारा
0: सेवक की रखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समारै
1: अपने जन का पर्दा ढकै
0: अपने सेवक की सर पर रखै
1: अपने दास को दे वडाई
0: अपने सेवक को नाम पाई
1: अपने सेवक की आप पत रख है
0: ताकि कदमित कोई न लख है
1: रब के सेवक को न पहुँचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दह दस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख है
0: भस्म कर लस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मांस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य वृथे जात
1: मारा न रख है अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडानी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: मरते मन तन तरपी है
1: नाम रत्न जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर ना ही दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: ऊठ बैठ सोवत नाम
0: रहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रब अपने जन कीनी दात
1: रहे भक्त आत्म कह चाय
0: रब अपने से रहे समाये
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: रहो नानक से ही जन पूरे
1: मर मेरे तिन की ओट ले
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जिन जने अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अब सियान पसगली छाट
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक किस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम
0: जिसके संग सिखी उदर है नानक हर गुण गा

0: संत पेटिया नानक मन परगास अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभु डीठा
0: ना प्रभु का लागा मीठा
1: सकल समिग्री एक घट माहे
0: अनक रंग नाना दृष्टा है
1: नौ नदी अमृत प्रभु का नाम
0: यही मैं इसका विश्राम
1: सुन समाध अनहद तहनाद
0: कह न जाइए चरित विस्मार
1: दिन देखा जिस आप दिखाए
0: नानक तिस दिन सो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: घट घट व्याप रहा भगवंत
1: धर्म माहे आकाश पयाल
0: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
1: अंतिम पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: संतर माहे
0: चार कुंट दिशा समाहे
1: इसके भिन्न नहीं को ठाओ
0: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद पुराण सिमरत मैं देख
0: सस्य सूर न खतरे मैं एक
1: वाणी प्राप्ति सबको बोले
0: आप डोल न कब हूँ डोले
1: सर्व कला कर खेल है खेल
0: बोल न पाइये गुण मोल
1: सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत
0: धार रहे स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद परम का नास
0: नानक तन मैं एहो विसास
1: संत जना का पेखन सब ब्रह्म
0: संत जना के हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने शुभ वचन
0: सर्व व्यापी राम संग रचन
1: जिन जाता तिसकी यह रहत
0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो हो सोई सुख मान
0: कर्ण करावन हार प्रभु जान
1: अंतर बसे बाहर पियो ही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्राप्त सकली उत्पात
1: इस भावे ता करे विसार
0: इस भावे ता एक अंकार
1: अनक कला लखी न जाए
0: जिस भावे तिस लय मिलाए
1: कवन निकट कवन कही है दूर
0: आपे आप आप प्रभुर
1: अंतर्गत जिसे आप जनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: सर्व भूत आप वर्तारा
0: सर्व नैन आपे खनहारा
1: सकल समग्री जा का तना
0: अपन जस आप ही सना
1: आवन जाने खेल बनाया
0: आज्ञाकारी कीनी माया
1: सब कह मत अलिप्त हो रहे
0: जो किश कहना सो आपे कह
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
0: नानक जा पावे ता लय समाए
1: इससे हो ही सुना ही बुरा
0: उरे कहो किने कश करा
1: आप ला करतूत आत्मी की
0: आपे जाने अपने जी की
1: आप साज धारी सब साच
0: पोत पोते अपन संग राज
1: ताकि गर्मित कही न जाए
0: दूसर होए ता सोजी पाए
1: इसका किया सब प्रवान
0: गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए
0: आप मलाए लय प्रभु सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत
0: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
1: धन धन धन जन आया
0: जिस प्रसाद सब जगत कराया
1: जाने अमन का यह सुहाओ
0: जन के संग चित आवे नाम
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार
0: नाम।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोबिंद
0: मन तरकी उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंगे अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपा
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त होत उधार
0: आप त्रैलोक निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजे
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजे
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मिलाए
1: मिट गए बैर भय सबरीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आल बिकारते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभधारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्रभ की उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सो होत निधान
1: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए पल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समृत शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटे
1: जा कै मस्तक कर्म प्रभ आए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुने लाए प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म ता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत ता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सत्य ऊच ता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

0: धनवान हो जाए। क्यों होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया, दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तू परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। भगत कबीर ऐलानिया कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कहिंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा, तो कबीर कहिंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां वी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई। मैं सच हो गया, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। मैं कर सारे मनुखां दा एक कोई भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होण दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारिया नु दिते हुए ने। सीमित ने ये असीम हो सकते ने, उन्हों याद कर करके किवें उसनों याद करिए। पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारिया का और मुखी सजना का। बार बार धन्यवाद। फुल चुकदी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.

जन काल राखे मेरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने बेअंत बेअंत कृपा कीती है जीवां दे कल्याण दे वास्ते निरंकारी दर्शन दीदार सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। तुर की बाणी दा नितनेम सतगुरु साहब जी ने बख्शिश की।

बनन मन बोए सोए पै कीर्तन जस को नचना चसे चले सिरोए उड़ना जाई सिदना हो नचन कूदन मन का चाओ नानकू जिमन भाओ।

थोड़ी पढ़िया खबे गुनहगार तो मैं साध न मारिए जी हका लिकालन ते उना पचारिए सी कर न खेडी जित दर के हारिए पढ़िया ते मैं विचार के विचारिए मुए चले सोगे मारिए मुए चले सो।

थोड़ी साहिब हो दयाल कृपा करी सहायकार करायसी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाई सी हुक्म नहीं होवे प्रमाण तो कसम का मिल पाए सी कसम पावे सो कर मन चंदे सो फल पाए सी तां दरगाह पैंदा जाए सी तां दरगाह पैंदा जाए सी।

0: जिसे की खसम समाये पौड़ी।
1: नानक अंत में जापनी हटा के पार बार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक ना गले जंजीर एक तुर चढ़ बिसया आप कराए करे आप कैसे करी पुकार नान करना जिंदगी आ फिर तीसरी करनी सा फिर तीसरी।

साहिब जी एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डठ सब दुख जाए ते बहादुर सिमरी है घर नौ ने दावे तहे सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई होए सहाय दसवें पातशाहियां की जो

कल कोर समुन्द्र में बूट तथे कबू मिटहै नहीं रे पछतायो तत् विचार जहे मथरा जग तारन कौ अवतार बनायो जप्यो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जो

हो गए ता डॉलर इत्थे पहुंचने करने ता गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो 6043491313 यूनिट 103-8840-120 स्ट्रीट सरी 6043491313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स दावा ते वादा पक्का।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट